करना चाहिए, तुम्हें नबी बनकर ज़िंदगी गुजारना है, ज़मीन पर तबलीग करना है। लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ कहेंगे, लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ बातें करेंगे, तुम्हें कुछ काम करने होंगे, तुम्हें अपने आप को ताकत अता करनी होगी ताकि तबलीग के रास्ते में तुम आगे बढ़ते रहो। क्या करना होगा पैगंबर इस्लाम को, कौन से तरीक़े अपनाने होंगे पैगंबर इस्लाम को? तो अल्लाह तबारक व तआला कहता, पहला तरीक़ा मेरे अज़ीज़ो, हमारे लिए भी यही पैगाम है, आज की शब जो दूल्हा और दुल्हन नई ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उनके लिए भी यही पैगाम है, जो कम्युनिटीज़ में काम करते हैं उनके लिए भी यही पैगाम है, लीडर्स के लिए भी यही पैगाम है, जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी यही पैगाम है, कॉमन मैसेज है सब के लिए, मुबल्लिगीन के लिए, उलमा के लिए, टीचर्स के लिए। अगर तुम काम करना शुरू करोगे, हक़ बोलना शुरू करोगे, हक़ के लिए क़याम करना शुरू करोगे, तो लोग चुप नहीं बैठेंगे, ताने कसेंगे, जुमले कसेंगे, आपके ख़िलाफ़ बोलेंगे, बुरे अलकाब से याद करेंगे। क्या करना होगा? पहला मैसेज जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर के ज़रिए से हम तक पहुँचाया वो ये कि वसबिर लिमा यकूलून, ऐ रसूल तुम्हें चाहिए कि तुम सब्र इख्तियार करो, सब्र करते चले जाओ, कहने वाला थकता चला जाएगा। जितना तुम सब्र के लेवल को बढ़ाते चले जाओगे उतना ही लोग थकते चले जाएंगे। अगर चिल्लाओगे, कंप्लेंट करोगे, नाराज़ होने लगोगे तो गोया तुमने कहने वालों को कामयाब बना दिया है। अगर कहने वालों को हराना है, तुम्हारे खिलाफ बोलने वालों की ज़बान को बंद करना है, तो तुम अपने मिशन का ख्याल करो, सब्र करते चले जाओ ताकि तुम अपने मिशन में कामयाब होते चले जाओगे। लोगों का काम है बोलना, लोग बोलेंगे नहीं तो मर जाएंगे, या माशाल्लाह, लोग बोलेंगे नहीं तो मर जाएंगे। लोगों का काम है बोलना, बोलने दो, लेकिन तुम्हारा काम लोगों के बातें सुनकर रुकना नहीं है बल्कि अपने आप को और आगे बढ़ाना है। सब्र करते चले जाओ, कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, जिस तरह बड़े रसूलों ने सब्र किया वैसे तुम्हें सब्र करना है। ज़र्रा बराबर सब्र में, पेशेंस में कमी नहीं आनी चाहिए। ला तकुन का साहिबिल हूद, हज़रत यूनुस की तरह भी ना बनना कि शहर छोड़ के निकल जाओ, शहर में रहो, सब्र करो, सब्र को हथियार बनाओ और लोगों का मुकाबला करो, सब्र को वेपन बनाओ, लोगों का मुकाबला करो। और तुम्हें मुकाबला करना होगा, पहला जरिया बताया अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रसूल के लिए, सब्र करो, तुम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। और पैगंबर इस्लाम ने सब्र किया और अपने मिशन में आप कामयाब हो गए। एज ए रसूल ज़मीन पर काम करना हो तो तुम्हें सब्र करना होगा, नंबर वन। नंबर टू, ऐ रसूल तुम्हें कुरान मजीद की तिलावत करना है, कुरान मजीद की क़िराअत करना है, इसलिए कि सूरह मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर में अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम दिया है। दो पैगाम है इन दो सूरों में, खुसूसी तौर पर सूरह मुज़म्मिल में एक पैगाम ये कि ऐ रसूल तुम्हें ताकत लेनी है मुसल्ले से, नमाज तहज्जुद से तुम्हें ताकत लेनी है। तुम लीडर हो, ब्लेसिंग्स हैं तुम्हारे पास, तुम नबी हो, तुम रसूल हो, तुम टीचर हो, तुम मेंटर हो, तुम लीडर हो, तो ज़्यादा ब्लेसिंग्स तुम्हारे पास हैं तो ज़्यादा सजदे तुम्हारे पास होनी चाहिए, ज़्यादा इबादतें तुम्हारी पास होनी चाहिए, ज़्यादा राबेता अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से होनी चाहिए। कितना खूबसूरत जुमला कहा किसी बुज़ुर्ग आलिम दीन ने, बड़े लीडर को जानना चाहते हो ये कितना बड़ा है तो देखो उसके पास, उसकी ज़िंदगी में अल्लाह के लिए कितना वक्त है। अगर जितना वक्त उसके पास अल्लाह के लिए होगा, समझ जाओ वो उतना ही बड़ा लीडर है, वो उतना ही बड़ा इंसान है। अगर अल्लाह के लिए वक्त नहीं है, इसका मतलब है कि वो अभी प्राइमरी सेक्शन में है, वो अभी चलना अभी उसने शुरू किया है। उसे चाहिए कि मुसल्ले से और नमाज तहज्जुद से, नाइट प्रेयर से अपने राबेते को मजबूत करे। ऐ रसूल कुछ देर आराम करो, उठो, नमाज पढ़ो, सो जाओ, आराम करो, फिर उठो, नमाज पढ़ो, नमाज तहज्जुद से, नाइट प्रेयर से अपने आप को ताकत अता करो, पावर अता करो, एनर्जी मुसल्ले से लो ताकि दिन में लोगों की बातों का मुकाबला कर सको, ताकि दिन में लोगों के खिलाफ तुम खड़े हो सको। अगर दिन में खड़े होना है, अपनी कुदरत को दिखाना है, रात के अंधेरे में तुम्हें ताकत लेनी होगी। और तीसरा पैगाम, कुरान मजीद की तिलावत करनी पड़ेगी। कुरान फ़क्रउ मा तयस्सरा मिनल कुरान, फ़क्रउ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान पढ़ने का फ़ायदा क्या है? हज़रत इब्राहिम की दास्तान पढ़ो, हज़रत मूसा की कहानी पढ़ो, हज़रत ईसा का किस्सा पढ़ो, पढ़ते चले जाओ, अनबिया की जिंदगी

जिंदगी से इबरत और नसीहत हासिल करते चले जाओ। हजरत इब्राहिम भी अकेले थे, हजरत मूसा भी अकेले थे, हजरत ईसा भी अकेले थे, उन्होंने फाइट किया दुश्मनों के मुकाबले में। ऐ रसूल तुम घबराना नहीं, अगर मदीना मक्के में तुम अकेले हो, तुम्हारे मानने वाले कम हैं, तुम्हारे कंपेनियंस कम हैं, मायूस ना होना। हजरत इब्राहिम भी कामयाब हो गए, हजरत मूसा भी कामयाब हो गए, हजरत ईसा भी कामयाब हो गए, तुम भी कामयाब हो जाओगे। उनसे सबक लो, उनसे इबरत हासिल करो, उनके वाक़यात को पढ़ते चले जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी में ताकत आती चली जाएगी। इब्राहिम की तरह, मूसा की तरह, ईसा की तरह, ये दास्तानें क्या फ़ायदा पहुंचाती हैं? एक फ़ायदा ये कि कंसोलेशन है, तुम्हें तसल्ली देंगे ये दास्तानें, तुम्हें तशफ़ी अता करेंगे, सुकून अता करेंगे। और दुश्मन के लिए एक वार्निंग है, दुश्मन ये ना समझे वो ताकतवर है तो मज़लूम अगर कम है, अगर तन्हा है, खाली हाथ है, तो वो जीत जाएंगे। फिरौन भी तबाह हो गया, हामान भी तबाह हो गया, नमरूद भी तबाह हो गया, कल के बड़े बड़े तबाह हो गए, और आज के सुपर पावर्स भी तबाह हो जाएंगे। कुफारे कुरैश भी तबाह हो गए, मुशरिकीन भी तबाह हो गए। जालिम ठहरेगा नहीं, जालिम रुकेगा नहीं, वो तबाह होगा, लेकिन शर्त यह है कि मजलूम के अंदर इस्तेकामत हो, मजलूम के अंदर रेजिस्टेंस हो, मजलूम के पैर अगर मजबूत हैं तो जालिम फना होगा, आज नहीं तो कल जालिम फना और तबाह हो जाएगा। ये वार्निंग है दुश्मनों के लिए। तुम ये ना सोचो कि आज रसूल को तुम परेशान कर रहे हो तो रसूल का मिशन रुक जाएगा, नहीं। मक्के से निकालने वाले जान लो, रसूल मक्का लौट कर आएगा। तुम आज रसूल को निकाल रहे हो, कल तुम रसूल के सामने खड़े होकर माफी की भीख मांगोगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत और ये अल्लाह तबारक व तआला का प्लान है। वो आए पैगंबर इस्लाम मक्का मुकर्रमा, कुफारे कुरैश पैगंबर इस्लाम के सामने खड़े होकर ये कहते जा रहे थे, ऐ रसूल तुम यूसुफ के भाई हो, वही करो जो हजरत यूसुफ ने किया है। हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया, तुम भी हमें माफ़ कर दो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, देखो कुरान मजीद पढ़ते चले जाओ, कुरान मजीद की तिलावत तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अता करेगी। एक सब्र, दूसरे नमाज तहज्जुद, और तीसरे कुरान मजीद की तिलावत। जब दोनों आपस में टकराएं, नमाज तहज्जुद और कुरान मजीद की तिलावत, सूरह मुज़म्मिल की आखिरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला कहता है, नमाज तहज्जुद मुमकिन है जंग की वजह से, मुमकिन है ट्रैवलिंग की वजह से, मुमकिन है बीमारी की वजह से। तुम 8 दिन 10 दिन शहर से बाहर रहते हो, कुफार के ख़िलाफ़, मुनाफिकीन के ख़िलाफ़, मुशरिकीन के ख़िलाफ़ जंग के लिए, मुमकिन है नमाज तहज्जुद में कमी आ जाए, लेकिन ऐ रसूल कुरान की तिलावत में कमी नहीं आनी चाहिए। फ़क्रो मा तयसरा मिनल कुरान, 2 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुज़म्मिल में कहा, फ़क्रो मा तयसरा मिनल कुरान, ये कुरान तुम्हें ताकत अता करेगा, ये कुरान तुम्हें कुव्वत अता करेगा। इसलिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, आज की ये हदीस है दुल्हा और दुल्हन के लिए जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमाया, उनके लिए, मेरे लिए और आप सब के लिए, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अल्लिमु औलादकुम हुब्ब रसूलिल्लाह व हुब्ब अहल बैतिही व तिलावत किताबिल्लाह, अपने बच्चों को तालीम दो, अदब सिखाओ। एक किस तरह से तालीम दे, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत सिखाओ, अहल बैत की मोहब्बत सिखाओ, और कुरान मजीद की तिलावत सिखाते चले जाओ, वो दीन पर बाकी रहते चले जाएंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सब मिलकर इंशाल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपने को जो बड़ा मनसब अता किया है, खातिमुन नबीन बड़े होने के बाद, अर्श पर रहने के बाद बावजूद, सिदरतुल मुंतहा के आगे बढ़ने के बावजूद, आप मदीने के गलियों में आप रहे, आप मक्के की गलियों में रहे, अपने दीन का पैगाम पहुंचाया, आखिरी लम्हे तक आपने दीन का पैगाम पहुंचाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दीन को और आपके मकतब को आलमीन का दीन और आलमीन का मकतब करार दिया। जो जो चीज़ें आपसे मंसूब होती गईं, वो सारी चीज़ें हमेशा बाकी रहती चली गईं।
اسلام دین آپ سے منسوب ہوا وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔

किताब आपकी जात से मंसूब हुई, वो किताब आपसे बाकी रह गई, वो अहले बैत आपसे मंसूब हुए, वो अहले बैत बाकी रह गए। किसी नबी की अहल बैत को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम और वो मंजिलत अता नहीं किया जो पैगंबर इस्लाम की अहल बैत को अता किया है। बकौल किसी बुजुर्ग स्कॉलर के, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी पर वैसा दुरूद पढ़ने का हुक्म नहीं दिया जैसे हमारे नबी के लिए हुक्म दिया है। सारे अनबिया पर सलाम, नूह पर सलाम, इब्राहिम पर सलाम, ईसा पर सलाम, मूसा पर सलाम, लेकिन जब हमारे नबी की बात आई, हमारे नबी पर दुरूद भी हो, हमारे नबी पर सलाम भी हो। इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मैं पहले दुरूद भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भेजते हैं साहिबान ईमान, तुम दुरूद भेजना। और एक सलाम का माना सलाम भी करना, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलाम भी करना, सल्लम तस्लीमा। और एक माना सल्लम तस्लीमा का ये अपने आप को पैगंबर इस्लाम के अहकाम और फरामीन के मुकाबिल में सबमिट कर देना, टोटल सबमिशन, जो रसूल कहे वो तुम्हारे लिए दीन है उसके मुकाबिल में आपको तुम्हें सर झुकाना होगा। सिर्फ दुरूद पढ़ने का मतलब दुरूद पढ़े सवाब कमाए निकल जाए नहीं, वो युसल्लिम तस्लीमा यानी जो रसूल कह रहे हैं उनके मुकाबिल में तुम्हें सर झुकाना भी पड़ेगा, एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा। इसलिए कि पैगंबर ही दरहकीकत एक पैकरे दीन है, एक तस्वीर है दीन की। शायद मैंने कहा हो कभी, दोहरा दूं, पैगंबर इस्लाम जो कहे वो दीन है, पैगंबर इस्लाम जो करे वो दीन है, हत्ता पैगंबर इस्लाम किसी अमल को देखकर चुप हो जाए वो दीन है। वो कहे तो दीन है, वो कहे ये कुरान है तो कुरान है, वो कहे ये हदीस कुदसी है तो हदीस कुदसी है, वो कहे ये हदीस है तो वह हदीस है, वो कहे ये रिवायत है तो रिवायत है। जो उसकी जबान से निकले वो कभी रिवायत बन जाती है, कभी हदीस और कभी कुरान। वो उसने कहा ये कुरान तो वो कुरान है, कुरान को हदीस से नहीं मिलाया, हदीस को रिवायत से नहीं मिलाया, रिवायतों को हदीस कुदसी से नहीं मिलाया। उसने कह दिया ये है तो ये है, जर्रा बराबर उसमें तब्दीली लाने की इजाजत नहीं है। खुदू मा अताकुम रसूल, जो रसूल ले आए उसे तुम ले लेना चाहिए। वो कह दिया तो कह दिया, उसने कुछ किया है तो किया है, हमारे करने में और उसके करने में, हमारे सफ़र में उसके सफ़र में, हमारे अरकान और आमाल में उसके आमाल में ज़मीन तो आसमान फ़र्क है। हम खड़े होते हैं तो हमारे खड़े होने को खड़ा होना कहते हैं, उस वो खड़ा हो जाए तो उसे क़याम कहते हैं, हमारे झुकने को झुकना कहते हैं, वो झुक जाए तो रुकू कहते हैं, हमारे सर ज़मीन पर रखने को सर रखना कहते हैं, अगर वो सर रख देता है तो वो सजदा बन जाता है। हम कुछ खाते पीते नहीं है तो भूखा कहा जाता है, वो खाता पीता नहीं है तो रोज़ा बन जाता है। उसका हर अमल हमारे लिए दीन बनता चला जाता है, उसका हर अमल हमारे लिए शरीयत बनती चली जाती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए कंप्लीट दी बेस्ट रोल मॉडल है पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी में और पैगंबर इस्लाम की लाइफ में। वो जो कुछ करे, जो कुछ कहे, वो जहाँ जाए, जहाँ से आए, उसका हर काम हमारे लिए हुज्जत है, हमारे लिए प्रूफ है, फाइनल प्रूफ है। इसलिए जहाँ विलायत की बात होती है, जहाँ इमामत की बात होती है, हम पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं, देखते हैं पैगंबर इस्लाम क्या कर रहे हैं। तब तबलीग की बात आती है तो क्या कर रहे हैं, आलम की बात आती है तो क्या कर रहे हैं, शब हिजरत की बात आती है तो क्या कर रहे हैं, जब गदीर की बात आती है तो आप क्या कर रहे हैं। आपका हर अमल चुनते चले जाओ, इमामत की दलीलें बनती चली जाएंगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जी बात आप तक पहुंच गई, वो खातिमुन नबीन है, वो रसूलुल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्फाज को कुरान मजीद की जीनत बनाया है। और जो तीसरी सिफत है अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया कुरान मजीद